गणेशाय नमः अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुतियज्ञ विभूषिताय गौरी

लाई मध्य चतुर्पती बलदथा ढुङ्ग लाई कृष्ण सके फुल फुलदथा पानी लाई मध्य चतुर्पती बलदथा ढुङ्ग लाई कृष्ण सके फुल फुलदथा हाथ जी चलार चले हाथ जी चलार चले बने मात्र देश बंद हर देश लहर चले।